0: మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी आपके साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चो, गनी खम्मा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे सुनने वालों का प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से और फोई बी की तरफ से ख़ास तौर से। और दोस्तों, हम आज आ चुके हैं लाइव स्टूडियोज़ में ब्रिस्बेन, राइट अंडर द स्टोरी ब्रिज, और हम आपके साथ देंगे 9 बजे तक। हम यानी कि मतलब हमारे साथ एक बहुत ख़ास स्पेशल गेस्ट है जो स्टूडियोज़ में आए हैं मेरे साथ देने के लिए 10 बजे तक। और जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस गाना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हम लोग इसलिए आए हैं, हम लोग हमारे गेस्ट और मैं आज बहुत बहुत स्पेशल प्रोग्राम वीकेंड का वार हम समर्पित कर रहे हैं एक बहुत वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू अ लेजेंड, अ हीरो फ्रॉम भारत के वायुसेना से, इंडियन एयरफोर्स। उसके लिए हमारे जो गेस्ट आए हैं स्टूडियोज़ में, हम उनके बारे में बात करेंगे। और इस शख्सियत को वीर चक्र मिला था 1965 में, और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हुआ था कुछ दिन पहले। और इसके लिए हम दिल से बहुत बहुत महसूस हो रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ साल पहले मेरे साथ आए थे स्टूडियोज़ में, एंड वी हैड अ लाइव इंटरव्यू विद हिम। और हमेशा वो एनजैक परेड में हिस्सा लेते थे हर साल। ही यूज़ टू लीड द कंटिंजेंट marching till the very end, and हाँ दोस्तों, इस गाना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ख़ास दौर से उनके लिए है, टू आर लेजेंड एंड आर हीरो एंड रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड कुक। और उसका देहांत हुआ था इंडिया में, भारत में। ही हैड गॉन फॉर अ सेरेमनी टू इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हर्ड द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दैट वी हैव लॉस्ट हिम। फिर भी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और 9:05 हो चुके हैं। हमारे साथ दीजिए, 10 बजे तक कहीं जाएगा मत। और क्योंकि हम लोग बात करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, जो मैं आपको परिचय करने जा रही हूँ इस गाने के बाद, ख़ास तौर से इस गाना स्पेशली फॉर अल्फ्रेड कुक, हु वाज़ अ हीरो

जी हाँ दोस्तों, केके की आवाज़ में, केके जो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिंगर्स, एंड वो भी हमें छोड़ के चले गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग

जी हाँ दोस्तों, एक और शख्सियत है जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और वो है जया, हु लिव्स इन वॉशिंगटन. उन्होंने शी हैड गिवन अस द ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ जॉन लेनन इमेजिन, विच वॉज रीमेड इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. आई वॉन्ट टू थैंक जया वेरी मच एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव जया इन वॉशिंगटन. टेक केयर एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ.